0: जान एन शिरे गुशा में चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ में
1: बिना रैप वाला रीमिक्स।

कुछ तो है तुमसे राबता, कुछ तो है तुमसे राबता। अरिजीत सिंह आपको सुना रहे थे, खान नॉट वन एंड ओनली सोनू निगम, मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की ही धुन।

मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, क्या गीत है ना गजमलोर सोनू निगम. En dit is de vierde versie alweer van die film, van dat nummer, anders gezongen. Dit keer door Sonu Nigam dus. Jungi San, filmkanaam, hey, Meri Khuda.

ये खेल आखिर किस लिए? मन नहीं उगता? कई कई बार तो खेल चुके हैं ये खेल हम अपनी जिंदगी में। खेल खेला है, खेलते रहे हैं, नतीजा फिर वही एक जैसा। क्या बाकी रहता है, हासिल क्या होता है? जिंदगी भर एक दूसरे के अंधेरे में गोते खाना ही इश्क है ना। आखिर किस लिए? एक कहानी है, सुनाऊं? कहानी दो प्रेमियों की, दोनों जवान खूबसूरत अकलमंद। एक का दूसरे से बेपनाह प्यार, कस्मों में बंधे हुए कि जन्म जन्मांतर में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, मगर फिर अलग हो गए। नौजवान फौज में चला गया, गया तो लौट कर नहीं आया, लापता हो गया। लोगों ने कहा मर गया, मगर महबूबा अटल थी, बोली वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। पूरे 40 सालों तक साधना में रही, वफादारी से इंतजार किया। आखिर एक रोज महबूब का संदेशा मिला, मैं आ गया हूं, शिवान वाले मंदिर में मिलो। कहने लगी देखा मैंने कहा था ना। दौड़ कर गई, मंदिर पहुंची, पर प्रेमी ना दिखाई दिया। एक आदमी बैठा था, एकदम बूढ़ा, पोपला मुंह, टांट गंजी, आंखों में मैल। बोली यहां तो कोई नहीं, जरूर किसी ने शरारत की है। मायूस होकर घर लौटी। वहां मंदिर में इंतजार करते करते वो भी थक गया, कोई नहीं आया, चिड़िया का बच्चा तक नहीं। हाँ, एक बुढ़िया आई थी, कमर से झुकी हुई, बाल उलझे हुए, आंख में मोतिया बंद। मंदिर में झांक कर देखा, कुछ बुड़बुड़ाई और अपने ही साथ बात करते हुए दूर चली गई। निराश हो गया बेचारा, बोला उसने इंतजार नहीं किया, गरजती रजा कर मुझे भूल गई, संदेशा भेजा था फिर भी मिलने तक नहीं आई, किस लिए? आखिर किस लिए ये खेल? मन नहीं उगता।

0: आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी है, ख्वाहिशें जो घुट गईं इस दिल में उनको दफनाना बाकी है, कुछ रिश्ते बनके टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है, इन सांसों पर हक है जिनका उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है।
1: सुनालो की सेवा में हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, खुद मोरखन। मैं हूं आपका खिदमत गुजार विजय असरफी। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार हो। आज है वंसदा बुधवार के सुबह के प्रोग्राम से आप सब जुड़े हुए हैं और कुछ गजलें हमेशा की तरह आज भी मैंने चुन कर रखे हुए आप सभी के नाम, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक तो कुछ भजन होगा आप सभी सुनने के नाम। यही आशा करते हैं कि आज भी हमारा हिस्सा का कार्यक्रम जो हम पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं आप सभी के नाम, सुनकर आप सब अवश्य पसंद भी करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आपको लेकर अगला गजल की ओर। आज के बुधवार के सुबह में इसको हम लोग मिलकर सुने, गुने और गुनगुनाइए आज की बुधवार के सुबह के कार्यक्रम में। लाया जा रहा है अमर FM नीदरलैंड और अमर FM सूरीनाम के जरिए आप सभी गजल संगीत प्रेमियों के नाम।

कुछ गजलें जो आज के प्रोग्राम में हम पेश करते हैं, जगजीत सिंह जी है और साथ में लता जी और ऐसे ऐसे भूपेंद्र सिंह और ऐसे काफी सिंगर्स के गजलें आज के प्रोग्राम में मैंने चुन कर रखे हुए हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आप सबको लेकर आज के कार्यक्रम में अगला गजल की ओर, मिल करके सुनते हैं एक प्रोग्राम जो पेश होते हैं अमर FM नई दलान के जरिए और अमर FM सूरीनाम के जरिए आप सभी के नाम ये सुंदर सा गजल प्रस्तुत किया जा रहा है आज की सुबह में।

किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

बढ़ते हैं आप सबको लेकर आज की बुधवार की सुबह में एक अंतिम गजल की ओर और उसके बाद में प्रोग्राम हम और आगे जारी करेंगे भजन के साथ। लेकिन उससे पहले ये सुंदर सा गजल आप सभी के नाम पेश होते हैं।

वादा के मुताबिक यहाँ से हम शुरुआत करते हैं भजन के साथ, और हमेशा जब हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम 5 बजे शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं गणेश जी के चालीसा के साथ, या तो गणेश जी के भजन, गणेश जी के मंत्र, या तो गणेश जी की आरती के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हमेशा हम शुरुआत करते हैं भजन कार्यक्रम। तो चलिए यहाँ से एक सुंदर सा प्यारा सा गणेश जी के मंत्र के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम शुरुआत करते हैं आज की बुधवार के सुबह के कार्यक्रम। मिलकर सुनते हैं, लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है अमर FM नई दलान के जरिए।

अति सुंदर गणेश जी की आरती आज की बुधवार के सुबह के कार्यक्रम में हमने पेश किया आप सभी सुनाल के नाम। चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर कुछ और भजन मैंने चुन कर रखे हुए, लेकिन उससे पहले ये सूर्यदेव कथा मिल करके सुनते हैं। प्रस्तुत किया जा रहा है अमर एफएम के जरिए आप सभी और सभी सुनाल के नाम, खास करके उन लोगों के नाम जो इस वक्त के साथ अमर एफएम के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के नाम ये सूर्यदेव कथा प्रस्तुत होते हैं आज के बुधवार के सुबह के कार्यक्रम में अमर एफएम नई दलांत और अमर एफएम सूरीनाम के जरिए मिलकर सुनते हैं।

प्रोग्राम और आगे जारी किया जा रहा है, जबकि बुधवार के सुबह के कार्यक्रम आप सब सुन रहे हैं। तो यहाँ से कुछ माता रानी के भजन आप सभी के नाम पेश होते हैं आज की सुबह के कार्यक्रम में।

चलिए शामिल करते हैं अब की बार प्रोग्राम में महेंद्रा कपूर जी को कि दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ये सुंदर सा प्यारा सा माता जी के भजन मिल करके सुनते हैं।

ये आशा हम करते हैं कि 4 बजे से लेकर अब तक हमारा हिस्सा का प्रोग्राम जो हमने पेश किया सुनकर आप सब पसंद किए। अभी थोड़ी देर के बाद हम आप लोगों से मिलते हैं भजन यात्रा कार्यक्रम के साथ। हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम और आगे जारी करेंगे, बस इंतजार करना, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को हम कहते हैं खुद मोर्ख वेलकम तुरुक। आज है वुंसदाग 6 मई 2020। सुबह के कार्यक्रम आप सब सुन रहे हैं और चलिए यहाँ से भजन यात्रा कार्यक्रम की ओर हम आप सबको लेके चलते हैं, बढ़ते हैं। और आज जबकि बुधवार है तो बुधवार के सुबह में हमेशा लोकल प्रोग्राम मतलब कि लोकल भजन के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हमारा आगे जारी करते हैं। और हर रोज की तरह आज भी शुरुआत करते हैं देनहाग से मंदिर सेवा धाम की ओर से। आप सभी भक्त प्राणी के नाम ये सुंदर सा माता जी के भजन मिलकर के सुनते हैं उस्ताद सिन रामबरन जी की आवाज में। और साथ ही साथ प्रार्थना है माँ की कृपा आप सभी सुनाल को प्राप्त हो। ये माता जी के भजन मिलकर के सुनते हैं आज की बुधवार के सुबह के कार्यक्रम में।

अति सुंदर सा भजन पेशवा है उस्ताद सिंध रमन जी की आवाज में प्रस्तुत की गई है दनहाग से मंदिर सेवा धाम की ओर से आप सभी भाग प्राणी के नाम हमने पेश किए। चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला भजन की ओर और अब की बार शामिल करते हैं देविंदर सिंह जी को और साथ में सविता सिंह जी को और भजन प्रस्तुत होते हैं दनहाग से श्री राम मंदिर और साथ में सोनार खाउस सर्फस की ओर से आप सभी के नाम ये भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ शुभ दिन शुभकामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन मिलकर के सुनते हैं आज की सुबह के कार्यक्रम में।

हनुमान जी के चालीसा मिलकर के हम लोगों ने सुने, प्रस्तुत की गई है ननहाग से श्री राम मंदिर और साथ में सोनार हाउस सिल्फर्स के ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किए। रतदाम सी काद 99 से ही से औदरिया धाम टेम्पल के ओर से आप सभी के नाम ये हनुमान जी के भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ साथ आज का ये दिन आप सभी के लिए शुभ हो, ये भजन अनिल भीम जी की आवाज में लाया जा रहा है आज की सुबह में।

रतदाम स्की का आदर निन्यानबे सही से अवदरिय धाम टेम्पल की ओर से आप सभी भक्त प्राणियों के नाम ये सुंदर सा भजन मिल करके हम लोगों ने सुने। शामिल करते हैं अब की बार बैरी दमरी जी को और पेश होते हैं भजन फ्लार दिंगा से श्री नंदा देवी मंदिर आनंद जी महाराज जी की तरफ से ये सुंदर सा भजन मिल करके सुनते हैं। साथ ही साथ सभी श्रोताओं को मंगलमय कामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन मिल करके सुनते हैं।

फ्लॉर्डिंग से श्री नंदा देवी मंदिर की तरफ से आप सभी के नाम ये सुंदर सा भजन बैरी डमरिज की आवाज में हमने पेश किए है आज की बुधवार के सुबह के कार्यक्रम में। डनहाग से देव मंदिर हेडबस्तूर और साथ में आल फ्रेविला खर्च की तरफ से ये सुंदर सा भजन द लायन ऑफ बैठगाना देवेंद्र सिंह जी की आवाज में मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के इष्ट देव आप सब पर कृपा बनाए रहे ये भजन मिलकर के सुनते हैं।

सुंदर सा भजन मिलकर के हम लोगों ने सुने देन हाग से देव मंदिर हर बस्तीर और साथ में आलफ राय विलखर्स की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किया संस्था अपना और साथ में सभी जुड़े हुए संगठन जो है और साथ में संस्था सत्य धर्मा होपफुली से आज की सुबह में एक बार फिर बैरी डमरी जी को हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ये सुंदर सा भजन मिलकर के सुनते हैं साथ ही साथ मंगलमय कामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन पेश होते हैं आज के सुबह के कार्यक्रम में।

प्यारी डमरी जी की आवाज में ये भजन पेश हुआ है संस्था अपना, साथ में सभी जुड़े हुए संगठन जो है, और साथ में संस्था सत्य धर्म होपफुली से आप सभी के नाम हमने पेश किया। एक बार फिर बैरी दमरी जी को हम शामिल करते हैं। भजन का बोल है सत्यम शिवम सुंदरम और भजन पेश होते हैं डेनहाक्स परिवार देव मंगल के ओर से, और साथ ही साथ डेनहाक्स से संध्या रायसन का माली डायरेक्टर जो है श्रीमान बॉय को सुखाई की तरफ से ये सुंदर सा शिव जी के भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ शुभ दिन प्रस्तुत किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हुए ये सुंदर सा शिव जी के भजन आप सभी के लिए लाया जा रहा है आज की बुधवार के सुबह के कार्यक्रम में।

अति सुंदर शिव जी के भजन मिलकर के हम लोगों ने सुने। गाने वाला बैरी दमरी जी की आवाज में प्रस्तुत की गई है दनहाक से परिवार देव मंगल और साथ में दनहाक से सांधिया रायसन का मालिक डायरेक्टर जो है श्रीमान बॉयको सुखाई की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किया। चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर हमारा हिस्सा का प्रोग्राम में एक अंतिम भजन की ओर और भजन पेश होते हैं नाम शुन स्टिफ्टिंग हिंदू अंडरवेस नीदरलैंड एंड द फाइव आन खसलोतन स्कूलन Amsterdam से श्री लक्ष्मी स्कूल Almere से श्री गणेश स्कूल Utrecht से श्री कृष्ण स्कूल Den Haag से श्री विष्णु स्कूल और Rotterdam से श्री सरस्वती स्कूल की ओर से आप सभी के नाम ये भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ ही साथ आप सबके जीवन में अनंत खुशियां प्राप्त हो ये भजन मिलकर के सुनते हैं।

मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, के दाना खाक में मिलकर गुलों गुलजार होते हैं। Waardeer iedere dag van je leven. Er komt ooit een moment waarop je zou willen dat je meer tijd had. Har din, har subah jo hame milte hain, hame kadar karna chahiye apne jeevan mein. Kyun karke kabhi aisa din bhi aa sakte hain ki hame khayal aaye ki kaash hame kuch aur samay rehta. सुनने वालों की सेवा में मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ बेया। बुधवार का दिन है, मई की 6 तारीख साल 2026। अपने मन के गहराइयों से आपको मैं स्वागत करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। खुशियां भरा दिन के लिए प्रार्थना, जो बीमार है, लाचार है, आपको तंदुरुस्ती सेहत मिले। परिवार में कहीं पर दुख है तो आपको सहन शक्ति ताकत मिले। Goedemorgen luisteraars, ik ben Bea en heet u van harte welkom op deze woensdag 6 mei 2026. Een hele mooie, succesvolle dag voor u allen toegewenst. Voor de zieken en hulpbehoevenden natuurlijk heel veel beterschap. En zit u in uw rouwperiode heel veel sterkte toegewenst. मुझसे पहले कोलेगा विजय असरफी जी आपको सेवा किया, जिसे हम धन्यवाद करते हैं। और यहां से मैं प्रोग्राम को टेक ओवर की हूं। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं पर है, हाँ उसी का नूर, रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। अपने हिस्से का भजन कार्यक्रम को अभी हम आगाज करते हैं। सुनने वालों, भजन यात्रा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा।

जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचती है, जहाँ तक अमोर एफएम का प्रोग्राम सुनाई देता है, मेरा प्यार आप सब तक पहुँचे। आप रास्ते में हैं, अपनी नौकरी की तरफ आप जा रहे हैं या कहीं और, तो रास्ते पर आप ध्यान देना, यातायात पर आप ध्यान देना। Bent u onderweg naar uw werk of gewoon ergens naartoe waar u moet wezen? Let op het verkeer en wees voorzichtig in het verkeer. En een mooie werkdag toegewenst als u gaat werken. आइए सुनने वालों, यहां से भजन कार्यक्रम दूसरा हिस्सा, सेफ बेफे का परिवार भारत सिंह जी के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए है।

आप सुनिए मधुर हनुमान चालीसा परिवार भारत सिंह जी के तरफ से सेफ बेफे का जो है एस बेफे इलेक्ट्रो टेक्निका श्रीमान और श्रीमती पेमैन योलंदा कुंज बिहारी रिकार्डो मिशेल जोवी और डेमियन सुनने वालों के नाम करते हैं।

हेस्बेफे इलेक्ट्रो टेक्निका श्रीमान और श्रीमती पिम एंड योलंदा कुंज बिहारी, चार बच्चे जो है रिकार्डो मिशा जोवी और डेमियन के तरफ से पेश हुआ। रोतराम जज से माता श्री धर्मदेव शिवपाल बाल गोविंद जी अपने बच्चों के साथ में हर एक सुनने वालों को एक शुभ दिन कहते हैं।

आवत राम लखन सिया बंसे रोतनाम जायत से माता श्री धर्मदेव शिवपाल बाल गोविंद जी अपने बच्चों के साथ में सुनने वालों के नाम किए हैं। इस बार सुनने वालों होफ्लीट से माँ इरेना लक्ष्मण अपना प्यारा बेटा अश्विन लक्ष्मण के साथ हर एक सुनने वालों को एक मंगलमय दिन पेश करते हैं।

छोरा जगत जंजाल और राम गुण गाने लगा। होपफुली से माँ इरेन लक्ष्मण अपना प्यारा बेटा अश्विन लक्ष्मण के साथ सुनने वालों के नाम की है ये राम भजन क्रिस राम खेलावन जी की आवाज में। इसमें सुनने वालों 2 मिनट गुजर चुके हैं 7:30 2 मिनट गुजर चुके हैं 7:30 और अगला भजन जो है सुनने वालों ये है डेविस्टेटिंग सोफोरा रोटरडम होपफुली आफरलिंग 237 पर है और ऑफर्स की आप स्वैक नंबर 59 पर डायरेक्टरीस आशा भग्गू जी के तरफ से सभी सुनने वालों के नाम है मीका सुक्खू जी की आवाज़ में।

भगत तोरे द्वारे खरे और मीका सुक्खू जी की आवाज में यह आप सुने दाख बस्तेरिंग सोफोरा रोटरडम होगवलीत आफरलिंग 237 पर है और ओवरसी अप्सवेग नंबर 59 पर मुफराव आशा भग्गू के तरफ से जूतरमेर से माता श्री एस महादेव अर्जुन शर्मा जी अपने बेटा बेटी दामाद पतो क्लाइन केंद्रन और अख्तर क्लाइन केंद्रन के साथ सुनने वालों के नाम करते हैं आंद्रे मोहन की आवाज़ में

जय जग जननी भवानी माता भजन जो आप सुने अभी श्री बिसुन बिहारी जी की आवाज़ में और पेश कराने वाले थे आनंद अर्जुन शर्मा जी सुंदा बेफेई के साथ में। अमोर एफएम का डायरेक्टर श्री सुभाष गोगार जी, श्रीमती आशा गोगार जी, सोनाता और राजा हर एक सुनने वालों को एक मंगलमय दिन पेश करते हैं।

ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के

0: Best Indian Astrologer. Guruji Ravishankar uit India. 25 jaar ervaring. कुंडली से विचारते हैं. जन्म कुंडली हाथ देखकर आपको राय देते हैं. इसका ओप्लोसिंग ढूंढते हैं. मंत्र तंत्र से दूर कर देते हैं. आपको जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस, फिनेंशियल, नेगेटिव एनर्जी, फैमिली, रिलेशंस, पैसे को आपको प्रॉब्लम है, सब हल कर देते हैं. गुरुजी रविशंकर जो भारत देश से आए हुए हैं, एस्ट्रोलॉग हैं. तार दीजिए 9613 99 95 06 93 39 96 95.
1: Einde reclame.

0: स्वर्गीय प्रदीप भजन जी की आवाज में अभी आप सुने कि सूरज रे जलते रहना। और 12 मिनट हुए हैं 8:12 ओवर 8 लुस्टरास।
1: जन्नत की रेल है
0: श्री कृष्ण राम खिलावन जी।

सब दिन होते ना एक समान। मोहम्मद रफी जी की आवाज में अभी आप सुनने वालों कुछ मतलबी सॉन्ग्स आज के शुभ के प्रोग्राम में हमने सेलेक्ट करके रखे हैं। बै इन बोटसिंग टुसन एन फ्रैक्टवाहन एन एम बुश ऑफ द A1 बै द लुटे इस दिनसदाग एन पर्सोन ओवरलेदन। हेट ओंगेलुक गेबेर्डे नादत एर फील वास ओंस्टान डोर द कंट्रोलेस आन द डुइटसे ग्रेंस। द वेग इस टोट 8 uur dicht geweest। Het ongeluk gebeurde rond 1:15. Een bestelbusje reed achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Op dit stuk snelweg richting Duitsland zijn al vaker ongelukken gebeurd. Prem ke bolie bol tumakse.

0: श्री नाम हमारा प्यारा देश, उसको हमेशा मैं प्रणाम करता हूँ भैया।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिंह गोविंद जी, और हम गाना जायला अब चलावे। अच्छा
0: अच्छा, बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे भैया,
1: फिर मिलेंगे, रेडियो पे जरूर मिलेंगे,
0: जरूर।
1: हाँ।

0: शिव गोविंद जी, met bij aan hele goedemorgen, welkom.
1: BRG, goedemorgen, Pieter Sivanandan.
0: Kaise bato, meneer Sivanandan?
1: Bahut baniya, bahut baniya. Tor awaaz sun le tao baniya hui gayi.
0: Oh, acha, bahut bahut dhanyawad. Kai baje se suno hai radio?
1: Hala safe hai se.
0: Oh, acha.
1: Sunset to Maria.
0: Ka bollo?
1: कुछ पुण्य मिले कि ना मिले,
0: कोशिश चाहे करे शिवनंदन,
1: वो
0: तो हम लोग के
1: नाम ले ला, भगवान के नाम ले ला तो हम सकला जरूर एक नौ जरूर मिला,
0: जरूर जरूर जरूर आ, अगर मन से प्रार्थना करियो तो वो जरूर स्वीकार होगा।
1: तो ये बात है, बोले बचपन के बात बतियाना चाहिए ना, तो हम बोलिए हम भी बता दें।
0: हाँ ढेर तो आप बता चुक लो बाटो मा, आज के न जो हम पूछी ला सवाल ये है कि पहले और अब में कुछ फर्क आप देखो है इंसानियत में, कि कैसे इंसान इंसान संगे रहे है।
1: पहले के जमाना में पैसा ना रहा, आज के जमाना में पैसा है और दुश्मनी है।
0: अच्छा,
1: लड़ाई झगड़ा।
0: हाँ,
1: अरे देख ले देश देश में का हुए है, लड़ाई झगड़ा हुए ना।
0: हाँ,
1: पैसा के पास है वो मांगे अपन देश जबर बनाए, मांगे अपन देश बनाए वो ऐसे। लेकिन पहले हमारे माँ एगो गांव के औरत के जाता खाए दे, हम अपन माई के लहंगा पकड़ ले।
0: हाँ,
1: जाए माई वो संगे हम तो,
0: हाँ,
1: तो जाए खाइको देवे।
0: हाँ,
1: बुढ़िया रहा वो
0: जी,
1: तो दो सिस्टर था, बरका सिस्टर था, नहीं जाने की ना।
0: ना वो बरका सिंह सब ना देख ली बाटी, हम ना जाने ना,
1: ना देख ले ना, ना। तनी बरका रहता जैसे रुपयों नहीं था के वो इसे रहता।
0: ओ अच्छा,
1: जैसे वो अरे ब्राइन रहता।
0: हाँ,
1: में भी जैसे अरे सिस्वन रहता।
0: हाँ, कोपर था।
1: हाँ, तो वो रहता तो बढ़िया माया में दे दो सिस्ट। अरे भैया तब तक घे हो जाए घर जाए स्कूल, तो एक चीज के ब्रेड की नहीं, एक चीज के कुकू की नहीं, तो पर वो करवाई के घर नहीं तक खाते खाते जाए स्कूल। पहले एक किलो में ही तो स्कूल रहता है, तो स्कूल जाए तो स्कूल से आई घर फिर स्लीपर पहनी सब दाम फूक फूक रहता, तो जाने अस्पताल न रहता बच्चे खाना रहता, तो तरफ चलते घसिया जाने कितना जबर जा रहता है, बाप रे बाप। तो वही बोले वो दिन ना चाहिए भुलाई के
0: ना कभी ना कभी ना।
1: हाँ, वो दिन में औरत प्यार रहा।
0: हाँ,
1: आपके दिन में प्यार ना है,
0: अब कौन प्यार बचा रहेगा बता तो हमसे। बाकी मेरे सुनंदन कहाँ रहते रह नाम में जब बचपन में छोटा पे?
1: हम रहते मंगोलन अनिस्ट्रात के पास है, क्रेपी
0: अनिस्ट्रात। वहाँ पर भी शांति के रास्ता रहा ना।
1: हाँ, शांति के रास्ता चिराग को रखना
0: रहता
1: होता।
0: बाकी एक सीस के ब्रेड उबस्तान रहा
1: ब्रेड तो हमारे यहाँ 30 सीस।
0: ओके। हाँ,
1: हाँ, एक सीस के कुकुआ मिला था।
0: हाँ,
1: एक सीस के रोड प्याजो भी मिला था तो
0: हम हमें याद है हम स्कूल जात रही थी तो हम किनत रही थी पौस में जाए के दुकान में चार गो बिस्किट और एक सीस के बोतरो पांच सीस भरे के परत रहा। हाँ, वो हमें वेल याद है। ब्रेड रेट तो बहुत कमती हम लोग खाते रहे ना, गरीब गरीब ताई रहा तो ब्रेड तनी महंगा पड़ जाता रहा।
1: हम लोग जब स्कूल जाते थे वही बोली बढ़िया माई जो देवत है पैसा दो चीज या तीन चीज, बड़का से सही से
0: पसंद
1: नहीं जाता कुछ कुछ कुछ मिले
0: या
1: अब कुछ ना मिले
0: कुछ ना कुछ ना सब कोई आपन आपन
1: पैसा तक कका बड़े कका और भात खाए की जाते स्कूल स्कूल से आइए घर ढल्ला हालत तो यही से फिर भात मिले खाए के खा लिए 2 बजे ऐसे जाना है खेत में खेती करे बाप लोग संगे हाँ खेती करे तक खेती करके जब अंजोरिया रात है तब 8-9 बज जाता है रात वही खेतवा में गाय गाय के घास का तो गाय के खोता पे खास घास खवाओ
0: हाँ उस सब टेम रहा गरीबी रहा बाकी और प्यार से आदमी लोग इंसान लोग रहत रहा जान आप हाँ
1: और प्यार रहा आप कहाँ प्यार सब मर गए
0: अच्छा मुझे शिवनंदन बहुत बहुत धन्यवाद तार के लिए अच्छा मोइसे रहियो
1: हाँ तो मोइसे अब तो कल शाम को सोलक करिए
0: हाँ
1: तो नहीं एक एक गो मौका मिल जाए पुराना पुराना बाप करे कैसे तो ढेर है करके तो हम बड़ी अच्छा सीखे
0: हाँ।
1: पे छोड़ दी
0: थैंक
1: यू वेल भैया
0: या और यू ओ खार तिलक डांक अच्छा
1: या एंड फॉर आवर लाइफ
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद
1: नहीं सकती नहीं नहीं तक मैं हरान तो वो बता दे
0: हाँ अब बता ही रही लो थैंक यू वेल अच्छा अच्छा राम राम नमस्कार ओके एंड दिट वॉज मनीर शिवनंदन जी लुस्तराज ook een prachtig verhaal het leven van vroeger en nu wat een verschil met Bea een hele goede morgen welkom
2: ja goedemorgen salaam Bea met Jozef
0: waalaikum salaam Jozef betaal toe aap een kahani
2: Je bataille. Am Sony Lassapke, leuk hè? Wij hadden het ook een regelen, dus een, ik merk er niks van. Nog daar, nog hier.
0: Nee, ik heb het niet over geld en financiën. Ik heb
2: het
0: vandaag.
2: Over die dingen. Ik over, heb... ook, over die mensen, hoe je met mensen. कोई बोले दुश्मन है कोई बोले प्यार है हम लोग सब कोई से ऐसे ही प्रेम प्यार मोहब्बत से बतियाला
0: ओके दिस टू एक को फर्श खेल ना मैरक करे कि आदमी लोग फरामदर भाई ला
2: एफ वन
0: ओ ओके नाउ
2: एंड आई कैप ओ के मेंस दी या लूर सेन ऑफ पॉन्स ऑफ वे अंडर सम ओ फॉर ऑल वे ब्रूस एंड स्विस वो सेम बाय अलकार हियर एंड इन लंबर्ग In Rotterdam allemaal.
0: Ja, ja.
2: We helpen elkaar als er iets is.
0: Nou, dat maar, is mooi. Dat is een mooi. En dit moet een voorbeeld zijn, ook voor anderen.
2: Ja, maar dat zeg ik zeg ook al. Want we komen om de 2 maanden komen we bij elkaar.
0: Ja.
2: Broers en zus allemaal bij elkaar, 1 keer.
0: Mm-hmm.
2: En ik zeg het ook. Als je zegt, hem lukt bij een bijna hele dag. Maar mijn baap lukt hem lukt is ik hij ze.
0: Ja.
2: Maar, larken, larken. Die garantie geef ik niet. Want dan hun hebben weer een andere opvoeding. Ze zijn hier geboren en ze gaan weer anders denken en die soort dingen.
0: Ja, ja.
2: Maar hamlok met behebaien bij mij ooit heen zo maken.
0: Nou, gelukkig. Houden zo. Houden zo. Is goed. Jozef, dank je wel.
2: Ja.
0: Dan ga ik een heel mooi een liedje draaien. Een levenslied.
2: Ja, is goed.
0: Atja?
2: En dat is een hele fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Groetjes. Atja. Dag hoor. Atja. Ik zal gelijk een paar appers meenemen, want anders wordt het te veel. Dan ben ik bang dat ik er niet aan toe zal komen. Nou, er is nog tijd zat, maar ik neem toch wat appers mee. Wilt u ook aansluiten op onze radio-app? 06-17-11-71-30. Soso Lobby mag ik ontvangen van Asha en Cecile Baldi Mahabir. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. En een hele mooie dag toegewenst. Hartelijk dank voor je lieve woorden hoor. Dank u wel. En jullie ook een hele mooie dag toegewenst. Ik doe mijn best. En fijn dat jullie ook luisteren. En programma Ko Aplo Bhi Pasand Karte Ho. En dan zie ik Moon Permisser, Soes Wierin en Isha uit Den Haag ook een hele goede morgen. En uit Den Bosch, Tuya Oudaar ook een hele goede morgen. Wat een mooie liedjes, leerzaam betekenissen Ik luister met heel veel plezier, dankjewel. Nou, fijn. Ook u bedankt voor het luisteren en dat u toch een deel van ons bent. Dankjewel, Tuja uit Den Bosch. Jozef en Mashuka. Jozef heb ik net aan de lijn gehad. Ook een mooie dag toegewenst. En Urmila en Alwin uit Venhuizen, ook jullie bedankt. Blijf genieten, dankjewel. En Shama uit Voorburg, ook de lieve groeten van hier uit de studio, dankjewel. En dan zie ik eventjes kijken. Merwe van dagbesteding Sofora, ook een hele goede morgen. En Merwe doet de hartelijke groeten aan iedereen. Dan zie ik even kijken, wie is dit? Radha uit Ippenburg. Ver van mijn ogen, maar heel dicht bij mij in mijn hart, tot in Turkije. Amor neem ik altijd mee. Nou, dat waardeer ik heel erg. Radha, heb een mooie vakantie. Dank je wel voor je berichtje. En mevrouw Santa Ramdeal, ook goedemorgen mevrouw Santa Ramdeal. En Bhai Mahinder Rampersaat, dank u wel, dank u wel. U ook een mooie dag toegewenst. En Sita uit Den Haag, gezegende woensdag ook voor u, dank u wel. En Sandra, ook goedemorgen Sandra, ook welkom. En deze Sandra... Nee, dan moet ik maar uit Muiderberg. Oké, ik heb hem gevonden. Uit het Gooise Muiderberg had ze ooit geschreven. Dankjewel Sandra, ook een mooie dag. Dankjewel. En Ruel en Sita Sukhu. En die wensen iedereen en hun kinderen en kleinkinderen een fijne dag toe. En ook mij. Dank jullie wel, Ruel en Sita Suku. Ook jullie een mooie dag toegewenst. Goedemorgen, lief Bea. Geweldig programma, hoor. Ja, moet ook een keertje bellen, hoor, Sila. Sila Tahlu en Roy Algu. Ook een hele goede morgen. Maar ik ben al blij dat jullie appen, hoor. Dank jullie wel. Luisteraars, het is heel druk op onze radio-app. Straks neem ik de rest mee. 06-17-11-71-30 is ons telefoonnummer van onze radio-app. Wilt u ook aansluiten? 06-17-11-71-30. En dan ga ik het liedje afspelen. Gina Heito, Jibar Haslo.

मोहम्मद रफ़ी जी थे सुनने वालों. पल पल बीत रहा है ये जीवन काहे करे अभिमान. 11:03 अलास्तराश 11 मिनट हो चुके हैं. इस समय 10:00 vandaag ook om 12:00 tijd voor overlijdensberichten en zorgsamachar.

जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो. एंड दिट वॉज जगजीत सिंह जी. ये गीत आज हम आप सभी के नाम की है. एंड दिट वॉज मैन प्रार्थना फॉर यू आलिन कि आपको खुशियाँ मिले, तंदुरुस्ती मिले, मुस्कुराते ही रहो, दूसरों के मदद करते ही रहो. चाहे कभी आंसू आ जाए आँखों में तो वो आंसू को भी अपनाकर और उसका सामना कीजिए. सेफ मिनुटन फोर हाल्फ एलफ लुस्तरार्स सेफ मिनुटन फोर हाल्फ एलफ. और यहाँ से प्रोग्राम में अब हम कुछ चेंज लाते हैं. है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन दे दिया.

गले लग जा लाइस्टरार्स बस क्या गाना थे ब्लाइफ तुम प्रात्रोस। हर एक गाना में कुछ ना कुछ संदेश छुपी हुई है, कभी रोमांटिक वाला, कभी दुख दर्द की कहानी, माँ कुछ ना कुछ तो है। एंड ए फंचस कैक एक गाना had ik iemand beloofd, maar ik heb nog even tijd. Oké, hem doen lee en dan ga ik het afspelen. Na dit nummer. 3 minuten over 11:30.

याद जब तेरी आएगी तुमको खबर नहीं करेंगे, लेकिन बेचैन दिल को हम थाम लेंगे। कुमार सानू एंड अलका याग्निक से सुनने वालों, अभी आप सुने हियर बाय द पावर ऑफ लव अमोर एफएम। धीरे धीरे नौ फाइव मिनट दमुदो रिखतेंग से रिक्लाम ब्लॉक। दो लफ्जों की है ये कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी।

0: सुनने वालों की सेवा में मेरा सादर प्रणाम और आदाब। मैं हूं बेया, अमोर एफएम नेदलम से बोल रही हूं। मृत्यु समाचार, मौत की खबर पढ़ा जाएगा।
1: अब तेरा बसेरा।
0: आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम याद दिलाते हैं। वही देता वही लेता, उसी का है संसार। एक आता एक जाता, ये जग का है व्यवहार। प्रोग्राम में सुनने वालों, चार परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार, मौत की खबर है। शुक्रवार मई की पहली तारीख को 55 वर्ष की आयु में डेनहाग इसिंगस्ट्रात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवल भान सिंह की मृत्यु हो गई है। शनिवार मई की 2 तारीख को 67 वर्ष की आयु में डनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु हो गई है। मंगलवार मई की 5 तारीख को 87 वर्ष की आयु में डनहाग के वाली माता श्री धान पालिया तुलसी सरजू की मृत्यु हो गई है। सोमवार मई की 4 तारीख को 59 वर्ष की आयु में स्पैकनेस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी की मृत्यु हो गई है। और सोमवार मई की 4 तारीख को 86 वर्ष की आयु में रोटरडम की रहने वाली माता श्री मिंच लोविसा नोहर स्टकल की मृत्यु हो गई है। इन समस्त परिवार की मृत्यु समाचार अमोर एफएम नीदरलैंड द्वारा अभी हम पढ़ने वाले हैं। और 2 परिवार की मृत्यु समाचार और है, जो शाम 6 बजे पढ़ा जाएगा। मंगलवार अप्रैल की 28 तारीख को 65 वर्ष की आयु में डेनहाग पीटर लांगनडाइक स्ट्रात की रहने वाली श्रीमती मटिल्डा गौरी चरण की मृत्यु हो गई है। और रविवार मई की 3 तारीख को 98 वर्ष की आयु में रोटरडम बेफरवाद रैनोव सिंगल की रहने वाली माता श्री मटिल्डा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पांडे की मृत्यु हो गई है। ये 2 परिवार की मृत्यु समाचार पढ़ा जाएगा आज शाम में 6 बजे। यहां से अब अमोर एफएम नीदरलैंड द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं मृत्यु समाचार, मौत के खबर। डेनहाग इसिंगस्ट्रात नंबर 135 से समस्त परिवार केवल भान सिंह, समस्त परिवार रघुनाथ बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार मई की 1 तारीख को 55 वर्ष की आयु में फ्राइडे 1 मई जोंगस्लेडन इन द लेफ्टाइड फ्रॉम 55 यार स्वर्गीय माता और पिता सुरुचपाल केवल भान सिंह और शीला केवल भान सिंह महाताप सिंह का बेटा, पत्नी श्रीमती शारदा केवल भान सिंह रघुनाथ का पति, रायश्री और भारत केवल भान सिंह का पिता, दामाद अमरेश रामजस का ससुर, अमायरा और शनाया रामजस का नाना, पोता यशवीर केवल भान सिंह का आजा, कमली सुनीता और जीत केवल भान सिंह का भाई, मुकेश कालीदीन और सत्या लक्ष्मी नारायण सिंह का सार और छुटकी फेरा का बड़को, 4 लड़कन का मामा और 2 लड़कन का दादा। डेनहाग इसिंगस्ट्रात नंबर 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवल भान सिंह की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज बुधवार मई की 6 तारीख को शाम 4:30 बजे हैन नोट साई फ्यूल नंबर 3 क्रिमाटोरियम हुक्सवार्ट में दाह क्रिया की जाएगी। सूरीनाम और नीदरलैंड से समस्त परिवार केवल भान सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार मई की 1 तारीख को 55 वर्ष की आयु में इन द लेफ्ट एट फ्रॉम 55 यार Naupua, Jan, Suni, Min, Helda, Sarma, Els, Gayatri, Asha, और Carla, चार काका, Dev, Sundar, Suresh, और Rajan, स्वर्गीय तीन काका, Rambaran, Ramsarup, और Ramdhani, तीन फूफा और पांच काकी का बेटा, सभी लड़कन का भाई, काका, दादा, मामा, नाना और आजा, स्वर्गीय पिता और माँ, सुरुचपाल जूरी केवल भाम सिंह और शीला महाताप सिंह का बेटा, स्वर्गीय आजा और आजी, शिव नारायण केवल भाम सिंह और बंसराज उमराव सिंह का पोता, डेनहाग इसिंगस्ट्रात नंबर 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवल भाम सिंह की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज बुधवार मई की 6 तारीख को शाम 4:30 बजे हैन नॉर्थ साई फ्यूल नंबर 3 क्रिमाटोरियम हुक्सवार्त में दाह क्रिया की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए और परिवार की मृत्यु समाचार। डेनहाग से समस्त परिवार सुखो, समस्त परिवार मंगरू, बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में Zaterdag 2 mei jongsleden om 8:55 's morgens in de leeftijd van 67 jaar. Patni Srimati Evelien Sukukapati, Vadika, Vandana, Deepak, Kiran or Shanette Kapita, Stephen, Isha or Vishaka Sasur, Duslerkan Kanana or Raja, Swergay Mata or Pita, Sukrani Raghu Mangru और सुख नारायण मंगरू का बेटा, डेनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू, आप इन्हें ज्यादा राज के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शो देखने के लिए अवसर रोसेंट्रम ओंस जोरख डेनहाग त्रिपस्त्रात नंबर 309 पर कल बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को दिन में 11 से लेकर के 12:30 बजे तक अंतिम क्रिया बसलोत क्रिंग में की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए हमारे सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार आप सुनने के लिए ध्यान दें।

नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कंधाई बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। मंगलवार बीते हुए मई की 5 तारीख को सुबह में 5:30 बजे 87 वर्ष की आयु में डेंसाग 5 मई gisteren om 5:30 morgens in de leeftijd van 87 jaar, Swargay Beta Orpato, Ishwar Prasad Kandhai ki ma, Chandar Kumari Subhag ki saas, do pota aur ek potin, Anand, Anil aur Anshala ki aaji, do nat pato aur ek nat damad, Anshala, Meena aur Jitendra ki ajia saas, 6 लड़कन की पर आजी और पर नानी। डनहाग के रहने वाली माता श्री धान पालिया तुलसी सरजू, आप इन्हें ज्यादा इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है, जो पहले डनहाग मेल स्टोकलान नंबर 256 और सूरीनाम व्याखदाग आ की निवासी थी। शव दर्शन करने के लिए अवसर बनाया जा रहा है रोज सेंट्रम लोस दुइनन डनहाग और डनहाग वेग 28 पर। कल बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को शाम में 6 से लेकर के रात 7:15 बजे तक और अर्थी शुक्रवार मई की 8 तारीख को दिन 2:30 के दरमियान डनहाग ओकनबर्ग स्ट्रात 21 क्रेमेटोरियम ओकनबर्ग में दाह क्रिया की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार। स्पैकनेस से समस्त परिवार ओरी समस्त परिवार कुंज बिहारी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 4 तारीख को रात 9:15 बजे 59 वर्ष की आयु में मांडा 4 मई jongsleden om 9:15 in de avond in de leeftijd van 59 jaar. Ma Dharamwati Ori Bansi or Swargay Pita Siv Ori Kabeta Patni Shrimati Sunita Ori Kunj Bihari Kapati Avinash Kumar or Stephen Jayant Kumar Kapita 5 भाई और 2 बहन सुरेश रजेश सरवन शर्मिला रणधीर मनोज और गायत्री ओरी का भाई 5 छोटकी काबड़ को 1 बहन हुई का सार 19 लड़कन का दादा मामा आजा और नाना। स्पैकनेस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी, आप इन्हें ज्यादा सुनील के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने के लिए अवसर बनाया जा रहा है रोज सेंट्रम द ओमरिंग स्पैकनेस ओपरेल्सवेग नंबर 3 पर। कल बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को 6:00 से 7:00 बजे तक अर्थी शुक्रवार मई की 8 तारीख को दिन 1:30 और 3:00 के दरमियान स्पैकनेस ओपरेल्सवेग नंबर 3 क्रेमेटोरियम द ओमरिंग में दाह क्रिया की जाएगी। तार का नंबर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और जानकारी के लिए आपको दिया जा रहा है 06 45 46 11 92 06 45 46 11 92। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए सुनने वालों अमोर एफएम नीदरलैंड द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं एक आखिरी परिवार की मृत्यु समाचार, एक आखिरी खबर। डनहाग से समस्त परिवार नोहर समस्त परिवार बालादीन और समस्त परिवार विदेशी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 4 तारीख को रात में 86 वर्ष की आयु में मांडाग 4 मई यंगस्लेडन इन द लेफ्टाइट फ्रॉम 86 यार भाई हेंद्रक नोहर और स्वर्गीय बहन झीन नोहर की बहन
मिंच बालादीन और परिवार, सोनिया बालादीन और परिवार, आशा बालादीन और परिवार, जॉन बालादीन और परिवार, ग्लेन बालादीन और परिवार, रेमी बालादीन और परिवार, सिल्फिया बालादीन और परिवार, ग्लेडिस विदेशी और परिवार, और स्वर्गीय दो बेटा आंद्रे और रूना बालादीन की मौसी। रोतनाम जैत के रहने वाली माता श्री मिंच लोविसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है। अंतिम क्रिया कब और कहां पर की जाएगी अभी निश्चय नहीं है। निश्चय होते ही अमोर FM के प्रोग्राम से आपको बताया जाएगा। इष्ट मित्र परिवार को ये खबर दी जा रही है। लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। आना और जाना इस मृत्यु लोक की रीत है। सुनने वालों से निवेदन गुजारिश है, मृत्यु समाचार, मौत के खबर और आगे तक पहुंचा देने को अमोर FM समस्त परिवार को शोक संवेदना प्रकट करते हुए, दुखित परिवार के दुख में शामिल होते हुए, गमजदा रिश्तेदार के गमी मातम में शरीक होते हुए, सहन शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं। यहाँ तक पढ़ा गया है अमोर FM नीदरलैंड द्वारा मृत्यु समाचार, मौत के खबर। सुनने वालों को हम याद दिलाते हैं कि आज शाम में 6 बजे हॉलैंड की समय और सूरीनाम देश में वहाँ का समय रात्रि में 6:15 बजे एक बार फिर मृत्यु समाचार, मौत के खबर पढ़ा जाएगा। Beste luisteraars, tot zover overlijdensberichten voor nu. Wij condoleren alle nabestaanden en we wensen u allen heel veel sterkte toe.

नहीं जानते हुए कि कब और कहां पर हमारे जीवन की अंत होगा, लेकिन एक बात तय है कि एक ना एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में डनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू, आप इन्हें ज्यादा राज के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हुई। अंतिम क्रिया बसलोत क्रिंग में की जाएगी। दुखित परिवार शहर डनहाग से पत्नी श्रीमती एफलिन सुक्को अपना पति वारिका, वंदना, दीपक, किरण और शानेत अपना पिता, स्टीफन, ईशा और विश्व अपना ससुर, डस लड़कन अपना नाना और आजा, स्वर्गीय माता और पिता सुखरानी रघु मंगरू और सुख नारायण मंगरू अपना बेटा के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए और मांग करते हैं।

दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। शनिवार मई की 2 तारीख को 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में डनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू, आप इन्हें ज्यादा राज के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हुई। अंतिम क्रिया बसलोत करें में की जाएगी। डनहाग से पत्नी श्रीमती एवलिन सुक्को अपना पति वारिका, वंदना, दीपक, किरण और शानेत अपना पिता, स्टीफन, ईशा और विश अपना ससुर, 10 लड़कन अपना नाना और आजा, स्वर्गीय माता और पिता सुख नारायण मंगरू और सुखरानी रघु मंगरू अपना बेटा के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए और मांग कर रहे थे। परिवार से हम यही कहना चाहेंगे कि श्री खेमराज मंगरू की यादें जो है उसे समेट कर अपने दिल के गहराइयों में बसा कर उनके लिए प्रार्थना करो। कि परमात्मा उसे एक अच्छी जगह दे। हे फेस तरक्त शक्ति आप सबको मिले। En tot zover luisteraars, mritu samachar ke baad aap sune ek sukh samachar. 6 minute baki hai is samay 12:30 bajne mein.

ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, जिसके अंदर ये एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपने रफ्तार से चलता रहता है, समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीद कर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए, उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से।

समय समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोग बस उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे चंदन का लेप लगाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी उस औरत के दिल से आवाज आई।

लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है?

कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है, अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी मां शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई, मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब

और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या

उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर, ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है ना, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे रख दिया।

उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफ केस अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है, अरे अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा।

0: चाहता हूँ तुझको, चाहता हूँ तुमको दिलो जान की तरह। ये प्यार नहीं तो और क्या है। इस प्यार में आपको याद करते हुए, आप सबको याद करते हुए कुछ ऐसे फेमस सॉन्ग है प्रोग्राम में जो आप फरमाइश कर सकते हैं। इमाखत आन फ्राख एन इमाख नतुर्लक नु इन बेले ऑप 03-244-7250 03-244-7250 voor dit nummer. En natuurlijk mag u ook appen. App bellen. From the movie Brahmastra. En wie mag er zijn met Radio Amor? Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag met
0: Janu. Janu, hoe is het met Janu?
1: हाँ,
0: मोई बात है, आप कैसे हैं? जानू, जब हम सुनिला तो नाम तो एक के गाना याद आवे, ओ मेरी जानू। जानू
1: मोई
0: बकेता बरूम या ये वर्ड बरूम हिंदी में बरूम के का बोले है जानू?
1: का बोले का बात है कि मामा
0: हमले हिंदी में बरूम के का बोले
1: हम ना बतापा एक कहानी सो एक्स हिंदी फिर प्रातः
0: या अच्छा वे बतावे तो केम तो
1: जानू बता दे अगर जी जाना पे तो बता दे तो हम भी जान जाबे
0: तू मांगे जाने एक्स
1: अगर जो अच्छा है अच्छा बात बताइ कने सो तो बताओ और अगर कुछ गलती है कि कुछ दूसरे से ना बताइए
0: ना तो सिंपल वे होर दैट हेल वेनक ऑफ रेडियो बरूम हिंदी में जो बोल जा है बरूम है प्रसिद्ध
1: प्रसिद्ध
0: प्रसिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध या
1: और जानू का मतलब क्या बोल रहे हो?
0: जानू तो लिव्ड है।
1: अच्छा हमारे लिव्ड है अमालो का सबके
0: ओके जानू फॉर वी विल यू द सेम
1: वो मेरे जान सबके लिए
0: और आपके जानू के लिए ना तू लग
1: प्रसिद्ध
0: P-R-S...
1: S?
0: Even kijken. P-R-A-S-I-D-D-H. Prasid.
1: Oh, Prasid. Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ook een matlab, hè?
0: Beroemd.
1: Oh, het is een beroemd. Ik heb het niet in die bepaald.
0: Nee. Hoe gaan jullie dat... आप लोग को भी सिखावल जाए तो
1: हाँ प्रसिद्ध क्लब दत हो तो सो तो
0: या जानू प्रसिद्ध
1: अच्छा बहुत धन्यवाद तो बोली ला तू प्रसिद्ध है कि मानी है अभी ना बताए पहला तो नंबर
0: तू प्रसिद्ध महिला बाट
1: अच्छा
0: प्रसिद्ध जानू
1: थैंक यू वेल हो
0: ओके करा कदा
1: ना जब ऐसे कोई है लो फाइनल ना एंड आई नीड फनी म्यूजिक
0: ओके थैंक यू वेल दुई प्रसिद्ध ओके nog één telefoontje voor dit nummer 03-244-7250 03-244-7250 en wie mag zijn? Hallo, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag met Kanti Kumar.
0: Kanti Kumarji, kaise baato aap?
2: Kanti Kumar. Mooi, aap kaise ho?
0: Radio bada tez khula le Kanti Kumar.
2: हाँ हल्ली से मत दिल दे
0: तो नहीं मत दिम कर दिए वहाँ तलांगला सा आपन स्टैम्प खुद सुनी ला
2: आपने सुना के बोल दो
0: अच्छा आप एकदम से होंदर थे
2: मोई भैया
0: कांति कुमार जी फॉर विवेलित वस्तैम किसके वास्ते
2: नो फॉर आल प्रोव लाइसर आर रेडियो अमर
0: ओके
2: सेटम
0: कांति कुमार सेटम क्लेम ऑफ अमर एफएम
2: दैट इज इट
0: आए के छोड़ के कहीं जाइए ना वादा
2: हम लाइन कर लिए अमोल के हमारे टेलीफोन में
0: ओके सेतम क्लैम अब अमोर एफएम कांति कुमार
2: बढ़िया
0: कहीं इधर उधर फ्रिक्वेंसी ना जाए पावे
2: ना
0: नहीं तो हम गुस्सा जाए अच्छा कांति कुमार बहुत बहुत धन्यवाद फोन के लिए
2: थैंक यू वेरी मच
0: ओके खरा खदान ओके दाग Na dit nummer, over 4 minuten mag u weer inbellen. Dit liedje wordt aangevraagd namens Janu. Hi, hi. En Kanti Kumar.

0: dag gevraagd namens Janu en Kanti Kumarji. Amor FM. En u mag nu inbellen. 010-244-7250. App bellen mag ook. 0617-11-7130. Voor dit liedje mag u nu inbellen. Arjit Singh. Muskurani ki wajah. Hallo.
1: Hallo, goedemiddag, met u Raj Bhattu.
0: Raj Bhattu?
1: Jee.
0: Raj, welke dag zei je wel?
1: Arre, bas, pura touten is aan al gaat.
0: Kab jij hè, welke dag zei Raj Bhattu?
1: Welke dag zei je, jana tha, ye baris mein, lekin kuch vyaas aadi se parivar mein to rukna padega.
0: Achha, achha, achha. Raj, kitna faak ja, kitna ja hai Suriname? Jaldi, jaldi, ek baris mein, 2-3 baar?
1: ना ना ना हो सके फतेहकर बाटी उतना था लोग बाकी जाए ना पायला.
0: अच्छा अच्छा कोशिश करे है
1: कोशिश है कोशिश है जाना अच्छा, चाहिए हाँ, ताकि वहाँ पर हमारा जो ना बुजुर्गों को पड़ा है ना उसे तो के याद पुकारता है और घींचता है भी
0: हाँ, और ढेर फैमिली है वेलकदाक्षी में आपका.
1: ना बहुत ना आएगा तो प्रोजेक्ट है समन के यहाँ से बनाए हैं प्रोजेक्ट पर दो चार परिवार हैगा जो ज्यादा से ज्यादा तो सभी इधर है.
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है सब कुशल मंगल है तो अच्छी बात है.
1: हाँ बस है वो आ जाता है कुछ समस्या ना वो तो जिंदगी में लगा है हर इंसान के
0: कभी खुशी कभी गम हमेशा है. राज भत्तू किस खुशी में आपके लिए ये गाना हम पेश कर लिया.
1: कौन सा गाना है सुन सकता हूँ.
0: मुस्कुराने की वजह.
1: अच्छा मुस्कुराने की वजह बहुत अच्छा बात है और खास करके मामी मामा श्री गोविंद के लिए जो वो हमेशा मुझे पुकारते हैं और सभी सुनने वालों को अपने बाल बच्चे नाथ हैं तो सभी को के लिए हम ये पेश करना.
0: अच्छा राज भत्तू जी धन्यवाद फोन के लिए.
1: धन्यवाद मानी जी आपको.
0: एंड सतम कलम
1: Of Amor FM.
0: Okay, dag Raj.
1: Dhanyawad.
0: Nog geen telefoontje voor dit nummer.
2: Muskurane ki wajah tum ho.
0: En app bellen mag ook. 06-17-11-7130. Met Amor. Welkom in de uitzending. राम राम किससे बात करें.
3: हिस्सला यांकी.
0: हिस्सला यांकी कैसे रह ले आप.
3: अच्छा बात है बहुत दिन तक की नाम सुन ली.
0: ना तनी छुट्टी से रह ली तो
3: गैले फकांसी.
0: हाँ वो भी चाहिए जीवन में लगल है तो कि हाँ, काम हाँ, करिए तो फकांसी भी चाहिए कुछ मनावे के ना.
3: क्लब क्लब क्लब अब तभी गैले फकांसी से इधर तो तब नहीं के स्विट्जरलैंड.
0: तो कहाँ जाइए स्विट्जरलैंड.
3: होटल.
0: अच्छा असुर नाम ना जा है हिसला.
3: एक बार बरिश जाते
0: काहे की बरिश ना.
3: बरिश हो ये ली है अब ची बरिश हो ये ली है आख फेब्रुवारी की तरह खाई ली है.
0: ओके कैसन लगल सुरिनाम में.
3: अरे दो ढाई हो ये ले तो इधर से फिर तो तक और अब ची फेब्रुवारी में गई.
0: बड़ा पैसा है तो क्या.

0: अब बिटोले ला तो क्या करी अरे सही को मैं कहता हूँ
1: हाँ सही कर रही थे सही कर रही थे
0: बेनाइक को रेस नाम में सकरीला
1: अच्छा
0: हाँ
1: खुशी की बात है हिस्ला यांकी फॉर वी विलियन बस्तेम
0: फॉर फॉर याओ महेंद्र सुखू मीना सुखू के एंड बेयर अंबतार
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद फोन के लिए हिस्ला सेतम क्लैम
0: अब अमोल एफएम
1: ओके दा हिस्ला
0: बड़ा प्यार से
1: अच्छा धन्यवाद आपको दम की वेल ओके दा Dit liedje wordt aangevraagd namens Raj Bhattu en Hisla Yankee. Over 5 minuten mag u weer inbellen.

0: het liedje werd aangevraagd namens Raj Bhattu en Hisla Yankee. Inmiddels 1:01:30. Amor FM, The Power of Love. Telefoonlijn is helemaal vrij. U mag natuurlijk nu inbellen op 010-244-7250 voor dit liedje. Met Amor, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, met mevrouw Sila Tahlu.
0: Met Sina?
1: Met mevrouw Sila Tahlu.
0: Oké, Sila Tahlu, hoe is het met je?
1: Het gaat zo gangetje.
0: Wat een mooie, mooie naam, Tahlu.
1: Tahlu.
0: Ja, of Sila. Sila, kaise baat hai aap?
1: Achha baat hai.
0: शीला एक ऐसा नाम है जो एक नए आदमी के जबान पर आ जाए, कभी भूली नहीं।
1: और सुशील है क्या भी?
0: क्या बोले?
1: सुशील।
0: सुशील, वो भी।
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: शीलावती।
0: शीलावती तहलू, सुरनाम में रहते हैं कहाँ पर आप?
1: कारनी सुनसपात।
0: शहर के छोड़ी बाटे।
1: शहर के बाद में तने बाहर शहर के गांव।
0: अच्छा अच्छा। शीला तहलू रोटदाम में रहे आप?
1: अच्छा,
0: शीला टहलू सेतम क्लेम
1: ओपामोर एफएम
0: खुद सो शीला टहलू फॉर विविलियत बस्ते में
1: फॉर राय अलगु एनेक्स्टा
0: मनचे
1: ओका फरियारी रहा तुए में आई के
0: रहा कितना बरिस के भाईल
1: सेवन ट्वेंटी
0: अब
1: तो राइट है तुए
0: क्या बोलो
1: तुए यं सेवन ता
0: आप तुए यं सेवन ता
1: Nou,
0: maar pati deel. Op pati deel 72. Oud toe 27. Ja,
1: ha.
0: Acha, Sila Tahlu, itna pyaar aap dono mein hai. Bahut bahut dhanyawad. Pyaar karte rahiye.
1: Thank you, ma'am.
0: Aur kehte hain ki ye pyaar hai, ye ishq hai, ye mohabbat hai aur hona chahiye pati aur patni mein. Sila Tahlu ki taraf se apna pati?
1: Roy Algu.
0: And?
1: तिला
0: तहलू सिर्फ रॉय के लिए
1: सिर्फ हाँ सिर्फ वो बात खत्म कर दे आज
0: अच्छा सिला तहलू बदाम फ्री बैले चे हैं
1: ख़राब
0: सदा
1: यू पेंडिंग थैंक यू
0: ओके एंड नोच एक टेलीफोन चे फॉर दिस नंबर आज फिर अरिजीत सिंह Telefoonlijn is helemaal vrij. 010-244-7250 voor dit liedje. Helmonsi. App kar rahi hai Radha Jagai. Kehti hai ek luister ook. Radha. Phir se Jagai. Radha Jagai. अपना पति आनंद रखन को बहुत बहुत प्यार भेज रही है अमोर एफएम से
2: शाखों से पत्ते बेहया
0: अनहिले खुईमिदाग भाई मानी कौन लिख रही है और ये है सिल्फी भैरव सिंह सिल्फी जी बदान फॉर ये एप मोया शंदिंग और ये है अश्विन लक्ष्मण
3: दीदार आया है फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया
0: एंड देन आई गेट द टेलीफोन चेस ऑन
3: बेहद
0: नेल उदय राशि अब मुझे ऐप से नेल उदय राशि ऐप कर रही है कि खुई मिदाग मानी लोग वकांसी खात धन्यवाद जरूर लोग वकांसी और सुरिनाम में तो हमेशा खुशियां ही खुशियां होती है जाने के लिए आने के लिए नहीं फॉर दिस नंबर मग यू नेटुलक नु इनबेलन ऑप 010-244-7250 शीला टहलू फरमाइश कर रही है अपना पतिदेव रॉय के लिए

आज फिर तुम पे प्यार आया है। आंख फ्रांस नाम शीला टहलू। Dit is Amor FM 0244-7250. Telefoonlijn is helemaal vrij. Voor dit nummer mag u bellen. 0244-7250. App bellen mag ook. 06-17.

0: हेलो मेटामोर।
1: हेलो
0: हेलो,
1: मुझसे बतिया
0: किसे?
1: वो गाना मंगाती बच्चू ने।
0: और कैसे बतिया ला?
1: मून
0: मून।
1: हाँ
0: अच्छा नाम है मून। मून कौन गाना मांगे तू सुने बताओ?
1: वो बिलारी ना हम मैं।
0: मून
1: हाँ
0: कौन?
1: कल रात को मुझे आप सलाम करेंगे।
0: कल रात को आप मुझे सलाम करेंगे?
1: मोहम्मद रफी गया।
0: कल रात को मुझे सलाम करोगे। मून इब्लूफ नेक्स मारे हम जाले कुछ के गाना खोजे और हम पाए जाबे तो तुरे नाम से दराई करबे।
1: हाँ वो खराग पाए जिए यूट्यूब पे।
0: हाँ खोजी ला हम। ऐसे ही अगर तीतल है तो मिल गए तो खुशी की बात है कि तो हम आपके नाम पेश करबे। अच्छा
1: अच्छा
0: ओके मून, धन्यवाद फोन के लिए। दाख मून कह रहा है कल रात को मुझे। ऐसा ऐसा गाना होता भी है, हो सकता है। अभी हम ढूंढ कर और कोशिश करके मून के नाम पेश करेंगे। लेकिन इस गाने के लिए एक फ़ोन और इमाख नतुलक नी इन बैल ऑफ 03244-7250 एंड मून एवं गेदुल्ड अश्विन लक्ष्मण फरमाइश कर रहे हैं। और दूसरा कौन है? मैथ रेडियो अमोर
2: मैथ लीली।
0: मैथ
2: लीली
0: लीली
2: या
0: लीली व्हाट इज योर नेम? लीली बेल्ट आउट
2: रोटरडम।
0: रोटरडम लीली फॉर वी विल यू बिस्टेमर
2: फॉर माय सेल्फ।
0: वारम फॉर योर सेल्फ लीली
2: या होन आई
0: फील दैट इट्स मोर लीली। ओके लीली ये बैंड लेकर तैस
2: या
0: खाइए स्टार्ट लेकर ga je lekker koken?
2: Ik ben in de tuin.
0: In de tuin? Wat moet je in de tuin doen?
2: Ja, ik heb een tuinhuisje, een moestuin, zo'n een volkstuin.
0: Aha. Heb je en wat geplant ook?
2: Ja, ja.
0: Peper?
2: Ja, peper natuurlijk. Zijn naam Kemarcha. Is altijd lekker.
0: Zijn naam Kemarcha, let hem als dat.
2: Zijn naam Kemarcha.
0: Aha. Lily, en wat eten we vandaag?
2: Ik heb chapsoi gemaakt.
0: Chapsoi.
2: En dat heb ik over. Mm-hmm. Dan ga ik eten.
0: Oké. Lily, ja. Bedankt voor je belletje. Hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja, okay. Dag Lily.
2: Dag.
0: Over 5 minuten mag u weer inbellen. Dit liedje wordt aangevraagd namens Ashwin Lakshman en Lily. Ken haar mee, Lily.

चुबेन नौथियाओ, इसके बारे में और चर्चा होगा, लेकिन इससे पहले मालूम रहे गीत को फरमाइश करने वाले रहे अश्विन लक्ष्मण एंड लिली। चुबेन नौथियाओ आपके सामने आ रहा है। सोमदाग 24 मई आहोय रोटरडम, चुबेन नौथियाओ।

0: Remember, Gebed Nautial, zondag 24 mei, Ahoy Rotterdam, met Radio Amor. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, bhaiya, bhaiya, Nazir Khan se.
0: Nazir Khan ji, kaise hain aap?
1: Sab chi mooi Allah ke dua se.
0: Acha, khushi ki baat hai. Nazir Khan ji, you belt for a leech. Ka bole? ना कोई सुहा है हमारे लगे मार कोशिश करके हम घुमावे इस वक्त तो ना हो सके खलाइक मार कौन गाना मांगे मैंने नजीर खान
1: बड़े प्यार से मिलना सबसे
0: मैंने नजीर खान हम बलूफ ना करेल मैं कोशिश कर बे बो
1: अच्छा ठीक भैया
0: ओके शुक्रिया धन्यवाद फोन के लिए क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है ऐसे होना चाहिए या कुछ मिस है कुछ है कुछ गड़बड़ है क्यों नहीं घूमता है ओ ऐसे होना चाहिए हाँ म्यूजिक चला गया था आ गया वापस 9324472590

कहा जाता है जो ऐप है हमारे पास. Goedemiddag, kunt u een lied voor ons draaien? Roy voor Mala en Mala voor Roy. Goed bad hè. Coaches hè, Zari. Goedemiddag Manny, super songs. We genieten van de uitzending. De groeten en zussen Lovie vanuit Den Haag. Jamie en Sandra Akal Lalaram. Goedemiddag Manny, wij luisteren ook naar u. Een fijne uitzending. Groetjes Olga en Chanda. Goedemiddag Manny, een fijne uitzending voor u. En een liefdevolle dag. Nice song. Namens Irene Abdul uit Den Haag. Groetjes van Praveen en Gita. Bahut khushi ki baat hai, aapko bhi bahut bahut pyar pahunche. Aur ek aur hai jo aakhri wala hum padhne chahenge aapke liye. Namaskar, kaise ho? नाम नहीं लिखते हैं लेकिन ये कहते हैं कैसे हो तुम और कैसे हो तुम. इसको तो खोजना पड़ेगा कौन है और सुरनाम से कौन, मुझे ये जानना चाहते हैं. ये होना चाहिए गांव के मुखिया, गांव के मुखिया जैन अनिरुद्ध. धन्यवाद, शुक्रिया ऐप के लिए. विमख नतुलख न्यू इन बेले फॉर दिस लीच कॉलर ट्यून प्रसंग दौर नीरज श्रीधर एंड नीता मोहन, सॉरी नीति मोहन. 0324472450 फॉर दिस लीजिए.

0: हाई कलर ट्यून वेलकम मेंदाई सैंडिंग
1: हेलो मनी कैसे बाटे
0: बहुत अच्छा
1: जोर से बच्चा है जॉन मनी सिंह एक वाला बस टाइम से यूरी अलमाओ ऐसो इधर इंडी लाइफस्टाइल
0: ओके दैट वाज अ जॉन
1: दैट वाज अ मनी
0: सो सो लोबी दाक
1: ओके दाक मनी
0: Nog één telefoontje voor dit nummer. 010-244-7250. Bellen mag ook. 0617-171-1731. Aangevraagd namens John.

color tune. De DJ werd aangevraagd. De naam is John en Mr. Loknaat. और शुरुआत में मैंने कहा फिल्म दो जासूस बिल्कुल गलत ये सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी हम शकल्स राज पांडे ध्यान से रेडियो सुनते हैं और बताया कि मैंने गलत बोला खैर हो जाता है कभी कभी दैट वाज लीचे आउट ऑफ फिल्म हम शकल्स फाइन आउटस्टैंडिंग आउट ग्रोनिंगन एप कर रही है ग्रोनिंगन लेक से सीता एंड रुवेल सुखू 0-10-244-7250 bellen mag ook 0-6-1-7-1-1-7-1-3-0 voor dit liedje.

हर दिल से हमारा नाता है। सुनने वालों, करीब इस वक्त बज रहे हैं 5 मिनट बाकी ढाई बजने में, 5 मिनट बाकी है ढाई बजने में। अमोर एफएम के प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं।

0: रास्ते में
1: जुबेन नौटिया
0: मिल गया था
1: लाइव इन कॉन्सर्ट अब सोंदाग 24 मई अहोय रोटरडम जुबेन नौटिया.

0: थे।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुबिन नौटियाल और आप सुन रहे हैं अमोल एफएम।
2: जुबिन, once again, don't forget, zondag 24 mei, Ahoy in Rotterdam, aapke samne India Bharati se top singer Jubin Nautiyal.

जुबेन नौतियाल। ऐसी जुबेन नौतियाल के लाखों गीते हैं, सॉन्ग्स है जो हमेशा से लोग पसंद करते हैं और फिर आपके सामने आ रहा है अब सोंदाग 24 मई इन अहोय रोटरडम जुबेन नौतियाल।

0: rock the world.
1: Of course, we won rock the world. साथियों, आज ये प्रोग्राम आप सुनने वालों के लिए पेश है 20 मिनट फॉर 4, 20 मिनट बाकी हैं 4 बजने में और आप उस तरफ हैं। आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ज़िंदगी में? तो आपको हम बहुत बहुत प्यार बताते हुए आज ये कार्यक्रम आपकी सेवा में जो हम पेश करते हैं, तो एक गीत है साथियों, ये गीत आपके लिए पेश करते हैं, बातों को तेरी हम भुला ना सकें।

बातों को हम तेरी भुला ना सके। अरिजीत सिंह दोस्त भाई बहनों, आज ये प्रोग्राम है, बुधवार का ये प्रोग्राम है। बच्ची लक्ष्मण प्रोग्राम दनहाख में भी फॉलो करते हैं, तो आपको भी हम बहुत बहुत आभारी है कि आप प्रोग्राम से जुड़े हैं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं दनहाख में। साथियों, हमारा मित्र कराओके सिंगर रॉय जियावन एम्स्टर्डम में है, और भाई रॉय आपको भी हम हेलो करते हैं रोटरडम से, क्योंकि आप एम्स्टर्डम में, हमारा कैपिटल में, हमारा कैपिटल शहर में आप प्रोग्राम फॉलो करते हैं।

लवली सॉन्ग साथियों, प्रोग्राम आपके लिए। और देखते हैं हमारे ऐप पर कुछ लोग हैं जो प्यार के साथ प्रोग्राम फॉलो करते हैं। एंड फ्रॉम इरीन अब्दुल, मैनी थैंक्स कि आज भी आप हमारे साथ हैं और हमेशा जब जब आप आते हैं तो बहुत सारा प्यार ऐप के जरिए बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऑटो गोकुल, आपको भी हम याद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। सर्वेश अयोध्या भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और सर्वेश को भी हम याद करते हैं। कहते हैं जुबिन का बड़ा फैन है, तो जुबिन आ रहे हैं 24 मई को सिर्फ शख्स एक शो के लिए, आप तैयार हो जाएं। और साथियों, आज ये कार्यक्रम जो आप तमाम सुनने वालों के लिए पेश करते हैं, हमारा टॉप डीजे डीजे नाल्डो बुधान प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं। और मफरो नाल, कैसे है, सब ठीक ठाक है? आपके ऐप हमारे पास पहुंच गए हैं और इस बात के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मफरो नाल। तो आप को भी हम लेके चल रहे हैं और प्रोग्राम में गीत जो हमने निकाले हैं, ये गीत ये लड़की जब जब स्टेज पर होते हैं तो क्या धमाल करते हैं, हर एक को दिलों को धड़काते हैं। नोरा फतेह, I walk through fire without fear. The dancing queen Nora Fateh. Night belongs to me. अभी एक गाना बना तो ये गाना पर इसको बैन लगा दिया गया कि अब ये गाना भारत में तो हाले हाल नहीं चलेगा, पर इनके डांस हजारों को निकम्मा बना दिया।

ओके वैसे वैसे सस मिनट नहीं खम मिनट नू फर फिर चार बजकर नौ मिनट हो चला है हम और एफएम से हम बोल रहे हैं हो गया सस में तू इधर सस सस तू इंतख मैं हूं सेवक इंद्र से बालक सिंह सभी को बहुत बहुत प्यार नमस्कार पहुंचे कुली खमानी अभी छह बजे फिर ऐसा दिन में आएगा मैं तो ऊपर लाइ दिंग्स बरेख्त तो छह बजे तक रहूंगा आप लोग के साथ आशा करता हूँ मेरे हिस्से के प्रोग्राम आप सुनेंगे और जरूर जरूर पसंद करेंगे मौसम तो अच्छा है आप कहीं भी प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं हमेशा तो मैं यही आप लोगों से कहता हूँ कि एंजॉय विद अमोर एफएम देखने नहीं तक पिन जेस पर एफएम पर आप चून कीजिए लगातार ये प्रोग्राम लाइव डायरेक्ट पेश होता है फन स्पर्त पारक से अभी पांच बजे अजकांग सखेंदा होगा आंसले द न्यूज एंड दाना हेत पखरामा भोजन के समय पर चटनी तो चूर रही है अमोर एफएम पर और शुरू करते हैं गीत रखे प्ले पर ये एक लड़की दिल चुरा ले गया

यस yes, दोस्तों माने ये सॉन्ग बड़ा अच्छा गीत आप सुन रहे थे आज के प्रोग्राम में कि एक लड़की ने दिल चुरा लिया। हमारे फिल्म के प्रोग्राम में दोस्तों भाई ने बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। मिलो ना तुम तो हम खबड़ाए, ये एक देश दोस्त भाई ने ये गीत मेरे ख्याल में नहीं थी इन सीफन तक में, इसको लता जी ने गाया लेकिन इसको न्यू यासु में बना सजा कर पेश किए है। मिलकर सुनते हैं मेल वॉइस में।

मिले न तुम तो दिल घबराए, मिले तो आंख चुराए, फीमेल मेल फैसी में आप ये सॉन्ग को सुने। ओके नहीं कमी तो फोर हाल फाइव हो चला है दोस्तों भाई बहनों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और एफएम के ये प्रोग्राम में। हम अगला गीत जो रखे प्ले पर, तेरा मेरा प्यार अमर।

खुद तो बैसे बैसे तीन मिनट ऊपर फाइव हो चला है, पांच बजकर दस मिनट हो चला है हमारे श्रीनाम देश में, तीन मिनट ऊपर ट्वेल्व। अर्जुन का मतलब यही होता है कि भोजन के समय पर चटनी का प्रोग्राम अब हम यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। कुलेखा से श्री नामदान के वेलफरत लिंकन, अब आप सब खाना बना चुके हैं या तो अपने रसोई घर में लगे हुए खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं आप सब स्वादिष्ट से भोजन करना। और तुरंत प्रोग्राम यहीं से हम शुरू करते हैं क्योंकि देखते हैं वक्त निकलता जा रहा है, तो वक्त हम बर्बाद मत करूँगा। शुरू करते हैं, सबसे पहला गीत रखे प्लेयर पर, लगे ले प्यारा बंगला।

शहर बंगला हमको लागेला प्यारा दो सुबह ये सबको आप सुन रहे थे अमोर एफएम के ये भोजन के समय और चिटनी के प्रोग्राम में देखते हैं दरुआ ना पियो सैया नसवा चढ़त है।

0: गाने वाले थे सिसिलिया फ्रॉम त्रिनिदाद। तो चलिए देखते हैं अगला सॉन्ग आ रहे हैं अमित शिव गुलाम की हम तो के चाहिला।
1: अरे ए लड़की ओ लड़की

यस दत्तोस भाई, अमित सी गुलाम फरमा रहे थे कि ए लड़की हम तो के चाहिला। आगे देखते हैं दोस्तों भाई ने कि इस वक्त घड़ी की तरफ देख रहे हैं तो 7 मिनट बाकी है 5:30 बजने में। सिर्फ नितिन फोर हाल वजह चला है भोजन के समय पर चटनी का प्रोग्राम यहाँ सर के सुनाम देश तक लाइफ ही डायरेक्ट पेश हो रहा है। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर के गौवा में लड़की बहार मास्टर ऑफ द मास्टर के इस जगह सर।

ससुईया मोरे भोली सजना दान मास्टर ऑफ द मास्टर केस जगेसर जी फरमा रहे थे ओके मैन सर दूसरे के धनवा तू खाए के मर जाइए तो फिर गधा बन के भरिए ले बेटा।

दुनिया रंग रंगेली रे बाबा गाने वाला था स्वर्गीय उस्ताद हरी सिंह बाला जी। चलिए हम यारों का यार एक्शन का तूफान आनंद भजन की ओर बढ़ते हैं। और भैया आनंद भजन क्या कहते हैं, ओ मोर भौजी।

यार को यार एक्शन का तूफान। भाई आनंद भजन जी फरमा रहे थे कि मोर भौजी रे। खुद दोस्तों भाई ने चलिए एक आखिरी गीत पेश करने जा रहे हैं। इस गीत के साथ ये भोजन के समय पर चटनी का प्रोग्राम यहीं पर हम खत्म करेंगे। कुली खान से नाम डांकी वर फरत लिंकन। अब आप सब खाना बना रहे हैं या तो बना चुके हैं। फुसरा की आप सब स्वादिष्ट भोजन करना। हम मिलेंगे आप लोगों से फिर सेम टाइम सेम प्लेस हियर बाय अमोर एफएम मेथड पोखरामा। भोजन के समय पर चटनी। आखिरी गीत मोरे नैनो की निंदिया उड़ चली।

उसी का है संसार, एक आता और एक जाता, ये जग का है व्यवहार। मृत्यु समाचार अमोर एफएम नई दलों से सुनने वालों सुनने के लिए ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। सात परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार पढ़ा जाएगा। सोमवार 3 मई रात में 10:30 बजे अख्त नई घंटक वर्ष की आयु में रोटरडाम बेफरवार राय नव सिंगल के रहने वाली माता श्री मातिल्दा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पांडे की मृत्यु हो गई है। मानदा 4 मई 66 वर्ष की आयु में दनहा के रहने वाली श्रीमती आयरिस कल्लू की मृत्यु हो गई है। मानदा 4 मई की रात में 67 वर्ष की आयु में रोटरडाम साउथ की रहने वाली माता श्री मींच लोविसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है। मानदा 4 मई रात में 9:59 वर्ष की आयु में स्पाइकनिश का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी की मृत्यु हो गई है। दिनांक 28 अप्रैल दिन में 1:28 पर 65 वर्ष की आयु में दनहाग पीटर लांगनडाइक स्ट्रात की रहने वाली श्रीमती मातिल्दा गौरी चरण की मृत्यु हो गई है। दिनांक 5 मई सुबह में 5:30 बजे 87 वर्ष की आयु में दनहा के रहने वाली माता श्री धनपालिया तुलसी सरजू की मृत्यु हो गई है। और 7 मई की सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में दनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु हो गई है।

Rond de naam bever waar rijden over Singeltje. Soms de perivaar baas deel zien. Maar hoe doe ik het aan die zoetje naar de geheim? Biedt ik is zondag 3 mei keer raad mee. Zal het des bij de 98 uit aan de bij. Waar is die aan mee? स्वर्ग पति शिव मोहन बांसदेव सिंह की पत्नी बेटा और बहू रोनी बांसदेव सिंह की माँ मोहन मती बांसदेव सिंह छोटेलाल की सास दो पोता जयंत और सूरज बांसदेव सिंह की आजी नद बहू निशा बांसदेव सिंह की अजिया सास पर पोता और पर पोतिन अमाया और रियांश बांसदेव सिंह की पर आजी Rotterdam Beverwaard, Rij Nauwe Singel, Kirehne Wally, Matashri, Matilda Lachpatia Baas Deusing, Mahabir Pandey. Matilda Lachpatia Baas Deusing, Mahabir Pandey, ki mrityu ho gayi hai. Schau dekene ka ausser, Rauw Centrum Monuta Memoriam, Rotterdam Langenhorst 100 per aaj woensdag 6 mei, s'avonds van 7:30 tot 8:30. Artie, vrijdag 8 mei, Kisham Mecharbadje, Rotterdam, Langenhorst nummer 100, Basmanterbhumi, Monuta, Memoriam me, Daha, Kriya ki jaegi. Dusra parivar, Rissedar ki, Mrityu Samachar. Den Haagse samaste parivar, Kallu, aur samaste parivar, Isan Doren, Bahudukke saath ye soochana de rahe hain. Maandag 4 mei ko 66, 66 varsh ki aayu mein. Pati, Siriman, Yanis, Isan Doren ki patni, Femke, aur Barend ki ma, Damad, Max ki saas, Pitashri, Lalta, Kallu, aur Swarge ma, Shors Kallu, Puran ki beti, Nirmala, Sita, Santa, Trus, Sham, Krishna aur Savitri Kallu ki behen. Teen behenoi ki Sali, ek chutku ki badki, do bhauji ki nanad, sabhi ladkon ki mausi, phua, aji aur nani, sabhi damad aur bahu ki mausiya aur phua saas. Denha ki rehne wali, Srimati Iris Kallu. Srimati Iris Kallu ki mrityu ho gayi hai. Jo Haagse onderwijs mee, commissaris van deskundigheid mee, werkzaam thi, aur Haaglanden speciaal voorgezet onderwijs ki docent thi. Rouwbezoek nahi hai, geen rouwbezoek. Arthi maandag 11 mei ki sham mee, tussen 4 uur en 5:30. Den Haag, Wijndaler Singel nummer 1, crematorium Haagse Duinen mee, daha kriya ki jaegi. आप परिवार से निवेदन है कि अर्थी में ब्लूम न लाए और बैठक नहीं है खेन बैठक आन हैश फ्लोरिक कैजुअल क्लेडिंग आंतरक ये परिवार की ओर से गुजारिश है निवेदन है तीसरा परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार Den Haagse समस्त परिवार नोहर पालादीन और समस्त परिवार विदेशी बहुत दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं मानदाह 4 मई की रात में 86 वर्ष की आयु में भाई हेंद्रक नोहर और स्वर्गीय बहन झीन नोहर की बहन दस लड़के मीचे बालादीन और परिवार सोनिया बालादीन और परिवार आशा बालादीन और परिवार जॉन बालादीन और परिवार ग्लेन बालादीन और परिवार रेमी बालादीन और परिवार सिल्विया बालादीन और परिवार ग्लेडिस विदेशी और परिवार और स्वर्गीय दो बेटा आंद्रे और रोनाल्ड बालादीन इन लोगों की मौसी रोटरडम साउथ की रहने वाली माताश्री मीचे लुविसा नोहर स्टाकल माताश्री मीचे लुविसा नोहर स्टाकल की मृत्यु हो गई है अंतिम क्रिया कब और कहां पर की जाएगी अभी निश्चय नहीं है चौथा परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार स्पाइकेरिश से समस्त परिवार ओरी कुंच बिहारी शोक के साथ ये सूचना दे रहे हैं मानदाग 4 मई की रात में क्वार्ट ओवर 9:59 वर्ष की आयु में मां धर्मवती ओरी बंसी और स्वर्ग पिता शिव ओरी का बेटा पत्नी श्रीमती सुनीता ओरी कुंच बिहारी का पति दो बेटा अविनाश कुमार और स्टीफन जयंत कुमार का पिता पांच भाई और दो बहन सुरेश
राजेश, सरवन, शर्मिला, रणधीर, मनोज और गायत्री ओरी का भाई, 5 छुटकी का बड़कू, 1 बहनोई का सार, 19 लड़कों का दादा, मामा, आजा और नाना, स्पाइकनेस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी, श्रीमान श्याम कुमार ओरी जिन्हें लोग ज्यादा सुनील के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउसेंट्रम द ओमरिंग स्पाइकनेस ऑफ रेल्सवेग 3 पर कल डोंडरदाग 7 मई s'avonds van 6 tot 7 uur अर्थी vrijdag 8 mei के दिन में tussen 1:30 en 3 uur स्पाइकनेसे ऑफ रेल्सवेग 3 क्रेमेटोरियम द ओमरिंग में दाह क्रिया की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस फोन का नंबर पर आप संपर्क करें 06 45 46 11 92 06 45 46 11 92। पांचवा परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार। Van aan de Rijn, Acacia straat nummer 10C, Samaste Parivaar Gauri Charan aur Samaste Parivaar Gopi, Sok ke saath ye soochana de rahe hain. Dinsdag 28 april, din mein 1:28 par 65 varsh ki aayu mein. Swargiya Mata Pita, Ram Narayan Gauri Charan aur Rajkumari Bhagwan Din ki beti. भाई और भौजी रॉबी गौरीचरण की बहन, कमला गौरीचरण गोपी की ननद, रीता, आनंद, संजय, रेशमा और रॉबर्ट की फुआ, दिलीप, रवीन, विक्टोरिया और तालीता की फुआ सास, 11 लड़कों की नानी और आजी, डनहाग पीटर लांगडाइक स्ट्रीट की रहने वाली श्रीमती मातिल्दा गौरीचरण, श्रीमती मातिल्दा गौरीचरण जिन्हें लोग ज्यादा सेल्फी के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है लेडन का LUMC में। अर्थी कल डोंडरदाग 7 मई की शाम में 6:15 डेल्फ्ट हॉफलान 18 क्रेमेटोरियम इपनहॉफ में दाह क्रिया की जाएगी। इस मित्र परिवार रिश्तेदार को खबर करते हुए अमोर FM नीदरलैंड से सुनने वालों और परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार। Den Haag से समस्त परिवार मनोहर कंधाई बहुत दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं। दिनांक 5 मई की सुबह में 5:30 बजे 87 वर्ष की आयु में बेटी कमला मनोहर कंधाई की मां, स्वर्गीय दामाद परशुराम मनोहर की सास, 5 लड़के रुपेश, राजेश, निर्मला, ऋषि और जेमी की नानी, नद बहू कविता की ननिया सास, शरीन की परनानी, दनहा की रहने वाली माताश्री धनपालिया तुलसी सरजू जिन्हें लोग ज्यादा इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है जो पहले दनहाग मेलस्टो कलान 2056 और सुरीनाम में वेलखदाग आ की निवासी थी। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम लोस डर्नन डेन हाग ओड हागवेग 28 पर कल डोंडरदाग 7 मई s'avonds van 6 uur tot 6:15 अर्थी vrijdag 8 मई के दिन में tussen 2 uur en 3:30 डेन हाग ओकनबर्गस्ट्रीट 21 भस्मांतरभूमि ओकनबर्ग में दाह क्रिया की जाएगी। सूत्रमीर से समस्त परिवार सरजू शोक के साथ ये सूचना दे रहे हैं। दिनांक 5 मई की सुबह 5:30 बजे 87 वर्ष की आयु में बेटा और बहू संजय सहजू की मां, आशा की सास, पोतिन और पोता शालिनी और सागर की आजी, नदमाद रिनेश की अजिया सास, अनीश और अवीश की परनानी, दनहा की रहने वाली माताश्री धनपालिया तुलसी सरजू जिन्हें लोग ज्यादा इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है जो पहले दनहाग मेलस्टो कलान 2056 और सुरीनाम में वेलखदाग आ की निवासी थी। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम लोस डर्नन दनहाग ओड हागवेग 28 पर कल डोंडरदाग 7 मई s'avonds van 6 uur tot 6:15 अर्थी vrijdag 8 मई के दिन में tussen 2 uur en 3:30 डेन हाग ओकनबर्गस्ट्रीट 21 भस्मांतरभूमि ओकनबर्ग में दाह क्रिया की जाएगी। अमोर FM नीदरलैंड से सुनने वालों आखिरी परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार।
दनहाक्षी समस्त परिवार सुखो मंगरू बहुत दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं। 7 मई की सवेरे में 8:35 पर सैफ ने 67 वर्ष की आयु में पत्नी श्रीमती एफलिन सुखू का पति वादिका वंदना दीपक किरण और शनेत का पिता स्टीफन ईशा और विषय का ससुर 10 लड़कों का नाना और राजा स्वर्गीय माता पिता सुख नारायण मंगरू और सुखरानी रघु मंगरू का बेटा तनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू जिन्हें लोग ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम ओंस सोरख दनहाग त्रिपस्त्रा 309 पर कल डोंडरदाग 7 मई ओवरदाग फन 11 टॉट 12:30 अंतिम क्रिया बसलोट क्रिंग में की जाएगी। दनहाग से समस्त परिवार कन्हाई शोक के साथ ये सूचना दे रहे हैं। 7 मई की सवेरे 8:35 पर सेफन 60 वर्ष की आयु में जॉन कन्हाई का साढ़ू भाई सीला कन्हाई का छुटकू आश्वन आंशला और वीरेश का मौसा 2 बहू और 1 दामाद का मौसा ससुर 5 लड़कों का नाना और आजा तनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू जिन्हें लोग ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम ओंस सोरख दनहाग त्रिपस्त्रा 309 पर कल डोंडरदाग 7 मई ओवरदाग फन 11 टॉट 12:30 अंतिम क्रिया बसलोट क्रिंग में की जाएगी। नीदरलैंड से समस्त परिवार बिसुन समस्त परिवार बालादिन और सभी परिवार बुझावन दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं। 7 मई की सवेरे 8:35 पर सैफ ने 60 वर्ष की आयु में एल्स बिसुन बुझावन गायत्री बालादिन बुझावन डैनी और विनोद बुझावन का मामा रॉय बिसुन अशोक बालादिन और अलीशा का मामा ससुर 5 लड़कों का नाना स्वर्गीय माता पिता सुख नारायण मंगरू और सुखरानी रघु मंगरू का बेटा स्वर्गीय 1 बहन और 2 भाई शीला मंगरू बुझावन जगन और क्रीस मंगरू का भाई स्वर्गीय बहनोई चंद्रपाल बुझावन का सार भौजी उर्मिला मंगरू का देवर और सभी लड़कों का मामा और काका तनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू जिन्हें लोग ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम ओंस सोरख दनहाग त्रिपस्त्रा 309 पर कल डोंडरदाग 7 मई ओवरदाग फन 11 टॉट 12:30 अंतिम क्रिया बसलोट क्रिंग में की जाएगी। आखिरी मृत्यु समाचार श्रीदाम से सभी परिवार मुंशी शोक के साथ ये सूचना दे रहे हैं। शनिवार 2 मई की सवेरे 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में साढ़ू और साली हरि मुंशी का साढ़ू भाई चंद्रा मुंशी का बहनोई 3 बेटी शाशिनी मुंशी सुषमा रघुनाथ मुंशी और राशिता मुंशी विशेषर का मौसा 3 दामाद रोड्रिगो कानिबानो और युगेश रघुनाथ और आर्मांत विशेषर का मौसा ससुर 4 लड़के रोहन और नोरा कानिबानो आरवीएन विशेषर और नयन रघुनाथ का नाना तनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू जिन्हें लोग ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने का अवसर राउ सेंट्रम ओंस सोरख दनहाग त्रिपस्त्रा 309 पर कल डोंडरदाग 7 मई ओवरदाग फन 11 टॉट 12:30 अंतिम क्रिया बसलोट क्रिंग में की जाएगी। इस मित्र परिवार रिश्तेदार को यह खबर की जा रही है, सुनने वालों से निवेदन है, अनुरोध है कि इन तमाम खबरों को और आगे तक पहुंचा दे। रेडियो अमोर इन समस्त परिवारों को शोक सहानुभूति प्रकट कर रही है। रेडियो अमोर इन समस्त रिश्तेदारों की गमी में शरीक है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, आना और जाना इस मृत्यु लोक की रीत है। सुनने वालों इस तरह अमोर FM नीदरलैंड से आप सुन रहे थे मृत्यु समझ।

किसान आता है, रुकता है और चला जाता है। यहां से सुनने वालों एक शोक समाचार। दिनांक 28 अप्रैल के दिन में 1:28 पर 65 वर्ष की आयु में Den Haag, Pieter Langendijkstraat की रहने वाली श्रीमती मातिल्दा गौरीचरण, जिन्हें लोग ज्यादा सेल्फी के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है लेडन का LUMC में। अर्थी कल डोंडरदाग 7 शाम में 5:45 डेल्फ्ट हॉफलान 18 क्रेमेटोरियम इपनहॉफ में दाह क्रिया की जाएगी। अल्फन आन द रैन अकाशिया स्ट्रात नंबर 10 से भाई और भौजी रॉबी गौरीचरण अपनी बहन और कमला गौरीचरण गोपी अपनी ननद की याद में मांग रहे हैं।

0: बनाया है। लड़का सुंदर और सुशील किस्मतों से पाया है।
1: अच्छा खासा लड़का देखो मैडम ने कैसे फंसाया है।

0: बार बार सैड वाले पीजेस भी सुनाऊंगा।
1: हराटो का शोर हो या फिर पिक्चर बोर हो, झेल लूंगी दोनों, बिकॉज आई लव यू, यू नो।

कसूर मेरा है कि यकीन किया है दिल तेरे ही खातिर जिस्म तू का ये गीत था तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है।

कि लेती है ये जिंदगी क्या क्या इंतहा। फिल्म का नाम था शुक्रिया और सोनू निगम जी ने गाया था। यारम फिल्म का नाम है एक थी डाइन सुनिधि चौहान।

0: Van de film Yarım, Sunidi Cihan. Sorry, van de film Ik Die Dain. Ja, Yarım, Sunidi Cihan heeft dit nummertje gezongen. Khamoshiya Gungunane Lagi.
1: बच्चे ये जगह देखेंगे तो बहुत खुश होंगे ना?
2: हाँ, खुशी से नाच उठेंगे।
1: लेकिन इस जगह को खरीदने के लिए मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से? एक तरफ उन बच्चों की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ मेरी प्रॉब्लम्स।
2: और तीसरी ओर हम जो है जी
1: गीता, तुम कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे जरा जगह देखो, मौका देखो।
2: अरे जगह तो भरपूर है, फिर भी तो दूर है, पास आ जी।
1: गीता, गीता प्लीज।
2: ओ साहब जी, रुपए पैसे की टेंशन छोड़ो। तू मालदार नहीं है तो के होया, दिलदार तो है। जिंदगी में कमी किस बात की है? तेरे पास हमारा प्यार जो है अनमोल। मैं हूँ।

कि खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। सुन लीजिए, मैं लता मंगेशकर जी के आवाज में सुन रहे थे श्रेया घोषाल एंड कैलाश खेर नैना चार।

फुटपाथ जरा देख मेरा दीवाना पर नलका जी और उदित नारायण आपको सुना रहे थे। एक बार विनेश गुरबीन और कुछ बॉलीवुड गीत हम आपके लिए इस घंटे